0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है पिलाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गे। शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गे। मालिक जो महबूब मोहम्मद को लेके।

0: सतरूद सजन ते पान दरूद अब धंधा।
1: इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जने पढ़ू था दरूद सजन ते पान दरूद अब धंधा, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं, ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त करो।

आपको देखता हूँ माशाल्लाह, आपको देखता हूँ दिल खुश होता है, पीछे देखता हूँ फिर बड़ा नर्वस हो जाता हूँ। अब आपसे गुजारिश है, जो खामोश बैठा हो उससे पूछ लें कि मौला अली का नारा लग रहा है तेनू खैर ते है, क्यों खामोश बैठा है? थोड़ा जा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहें मिलकर।

पता लगाए, इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबाज बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबाज बुलंद हैदर।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक कमा फरमाए बावाज़े बुलंद। जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है बावाज़े बुलंद। हैदर वरगा सकीन कोई वेखी आए जग सारा सफर दा बेड़ा।

0: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: हर दिन हर पहर ज़िंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
5: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
3: इट्स 9 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: शामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन है। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए 2 कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
5: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03132525786
1: जी हा 2315-2575-786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान जो जवाब जो कुझ ॾींहं ताईं इंतज़ार कंदासीं। ईरान वटि घटि वक़्तु आहे, जेसिताईं को माहिदो नथो थिए ईरान खे को बि रिलीफ़ न ॾींदासीं। नई ईरान खे एटमी हथियार ठाहिण जी इजाज़त हूंदी। असांखे ईरान खां सही जवाब हासिल करणो आहे, हुन लाइ कुझु ॾींहनि जो इंतज़ार करे सघूं था। हाणे जन ईराननि सां ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, उहे ज़हीन माण्हू आहिनि। ईरान जे दौरे ते तेहरान पहुतल वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जूं ईरानी क़ैद सां मुलाक़ातूं। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां ईरानी सदर मसूद पख़्शान, बासरान इनकलाब जे सरबराह जनरल अहमद वहीदी, ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी सां धारदार मुलाक़ात कई। मोहसिन नक़वी कुझ ॾींहं पहिरियां बि ईरान वियो हो। अमन मुआदे लाइ अमरीका सां अण सिधियूं ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ख़तम न आहे कयो। ईरान अमरीका सां जंगबंदी मुआदे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो बंदि चयो आहे त पाकिस्तानी टाकरे सां अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ईरान मथां लागू पाबंदियूं फौरी तौर ते ख़तम कयूं वञनि। असां बुनियादी तौर ते जेको चाहियूं था उहे असांजा मुतालबा न, पर असांजो हक़ आहे।

हिंदुनि जो रुहानी पेशवा साईं सादराम जो आखिरी रस्मूं रड़की दरबार में अदा कयूं पयूं वञनि। कुझु देर में सां अग्नी संस्कार कयो वेंदो। साईं जे अक़ीदतमंदनि जो ॾेह तोड़े परॾे मामद सिलसिलो जारी आहे।

गोसपुर ऐं प्रियालो में चोरन डिणबार ॾिनो। गोसपुर में चोरन हिंदू वापारी जे घर मां चोरी दौरान वापारी बसंत लाल खे शदीद ज़ख़्मी करे 20 लख रुपया फुर कया विया। प्रियालो में होटल तां लखें रुपयनि जो सामान चोरी। मुतासिर जो सखर पीर जो गोड़ ते धरणो। ट्रैफिक मुअतल।

0: सत्रह हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125252786।
2: जी हा 2315-2576।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
3: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाड़ी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
1: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन आब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे में
4: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने बया मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
3: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 बजे का रात 8 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनेकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 बजे खां शाम 4 बजे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 बजे खां 1 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदा
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 बजे खां 3 बजे ताईं मरीजनि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

地出嚟。अमेरिका ईरान विच में जंग के खात्मे लाए पाकिस्तान एक भेरों बीहर कोशिशों तेज कर छ्यूं। अरब मीडिया मौजूद मसूदे की हतमी शक्ल दियण के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज तेहरान पहुंची ईरानी कैद से मुलाकात कंदी। ईद उल अज़हाबाद इस्लामाबाद में गाड़ियों के बे दौर दौरान जंगबंदी मुआहदे से सहयू थियण जो इम्कान है। पाकिस्तानी अहम शख्सियत की अज वारे दौरे बाद ईरान अमेरिका विच में हथ थी सके तो।

अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान जे जवाब जो कुझु ॾींहनि ताईं इंतज़ार कंदासीं। ईरान वटि वक़्तु घटि थिए, ईरान खे को बि रिलीफ न ॾींदासीं। नई ईरान खे एटमी हथियार ठाहिण जी इजाज़त हूंदी। असांखे ईरान खे सही जवाब हासिल करणो आहे, उन लाइ कुझु ॾींहं इंतज़ार करे सघूं था। हाणे जिन ईराननि सां ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि उहे ज़हीन माण्हू आहिनि। ईरान जे दौरे ते तेहरान पहुतल वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो ईरानी क़यादत सां अहम मुलाक़ातूं। वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान, पासदान इनकलाब जे सरबराह जनरल अहमद वहीदी ऐं ईरानी हमनसब सिकंदर मोमनी सां धारदार मुलाक़ात। मोहसिन नक़वी कुझु ॾींहं पहिरियां बि ईरान वियो हो। अमन मुआदे लाइ अमरीका सां अण सिधियूं ॻाल्हियूं जो सिलसिलो ख़तम नाहे कयो। ईरान अमरीका सां जंगबंदी मुआदे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो बंदि करण जी तरदीद करे छॾी। ईरान जे परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त पाकिस्तान जे टाकरे सां अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ईरान मथां लागू पाबंदियूं फौरी तौर ते ख़तम कयूं वञनि। असां बुनियादी तौर ते जेके चाहियूं था उहे असांजा मुतालबा न पर असांजा हक़ आहिनि।

सलामती काउंसिल के ट्रंप के धमकियों सामू खामोश न वेहन घुर्जे। गयल कौमन में ईरानी सफीर जो मुतालबो। अमीर सईद ईरानी ट्रंप ईरान से हमला, ईरान के पत्थर के दौर में धिकण जो सरेआम धमकी पो डे। ट्रंप ईरान के एटमी साइंसदान तवानाई इक्सादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही समेत ईरानी तहजीब तबाह कर धमकी भरी चुको है। सलामती काउंसिल की ही खामोशी खतरनाक अमल के जन्म दई सके थी। आलमी सतह के तेल जगह में घटताई बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। हैंडेड इंडेक्स में 26,000 पॉइंट्स में वाद। आलमी मंडी में तेल जो फी बैरल अघ $100 का भी घटी पो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हैंडेड इंडेक्स 1,67,731 पॉइंट की सतह पहुंच गया।

हिंदुनि जे रुहानी पेशवा साईं सादराम जो आख़िरी रस्मूं रेड़की दरबार में अदा कयूं पयूं वञनि। कुझु देरि में संदसि अख़िरी संस्कार कयो वेंदो। साईं जे ज़ारीन जे अक़ीदतमंद ॾींहुं अॾे तोड़े परॾे मां आम जो गोसपुर ऐं परियालू में चोरनि रिण बारे ॾिनो। गोसपुर में चोरनि हिंदू वापारी जे घर मां चोरी दौरान वापारी बसंत लाल खे शदीद ज़ख़्मी करे 20 लख फुरकरे विया। परियालो में होटल तां लखनि रुपियनि जो सामान चोरी। मुतासिरनि जो सखर पीर गोड ते धरणो। ट्रैफिक मुअतल। पिथोरो में नारी ऐं नौजवान मुबैना तौर ते गॾिजी आपघात करे छॾियो। पुलिस चवण आहे त जमील मरी गोट में पढ़ियल नारी जिया कोली ऐं नौजवान भुरो कोली वण में फाओ खाई आपघात कयो। दादू जे घोट सूमर खान कमराणी में बि नौजवान मुबैना तौर ते आपघात कयो। पीटीसीएल मुलाज़िम 25 साल कयूं कमराणी फाहो खाई ज़िंदगी जो अंत आंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
7: अवां जे पंहिंजे शहर माखली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण

0: औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि थई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छा आवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
1: जी हा, 2315-2576।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐ हां गोठन शहरन ऐ परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ऐ पेंजे इश्तियार हलाण लाए
2: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576
2: जी हां 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे इत्माद खे कायम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा आवां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786।
1: जी हा 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 247-3141-230।
5: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे।
1: It's 12 PM. This time check is brought to you by
2: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: गर्दन में गुरबल खारजी, दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तुर साकब शामिल।

0: माथली और माथली की आवाज GFM 90.4
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 0331252578
2: जी हाँ बुड़ी 231 5 5 786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 Network, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
7: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
8: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
7: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
8: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
7: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
8: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
7: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435

0: एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
2: 90.4।
3: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
0: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
0: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
2: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानू सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
5: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

उत्तर वजरिस्तान के इलाके सपनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन चार खारजी दहशतगर्द मारजी वह मारजी वाल दहशतगर्द में घुर्बल खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकब शामिल सिक्योरिटी ज़रन मूजिब खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकब के सिर की कीमत 30 लख रुपया मुकर्रर हुई। मारजी वाल दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरों के हमलों को मास्टर माइंड हो। खारजी दहशतगर्दन उमर बोबाली मस्जिद पारा जमीन बैंकर ठहण से गुड बारूदी सुरंगू भी विछाय हुय। पाकिस्तान पारा इसराइली जारियत जो शिकार बनल गजा वासन लाए खाद खुराक खड़ी वेंदड़ इंसानी हकन के कारकुन इसराइल के बदसलूकी वाले वाक्य की सख्त लफ्जन में मजम्मत तर्जमान है तो ग्लोबल समूद पेट्रोला के रोकण और कारकुन से बदसलूकी आलमी कानून खिलाफ है। काफिले में शामिल पाकिस्तानी शहरी साद इदी समेत समूरन इंसानी हकन के कारकुन के आजाद करण जो मुतालबो स्पेन और इटली पारा भी इसराइली कदम की मजम्मत स्पेन के वजीर आजम है तो पिलोटोला के कारकुन की यह गाल कबूल जोगी ना है। पंजन शहर से बदसलूकी कें भी सूरत में कबूल न कई वी इटली में इसराइली सफीर की तलबी वाक्य की वजाहत तलब कई पी है।

ईरान जंग जे खात्मे लाइ अमरीका जूं नयूं तजवीज़ूं मिलण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी पटी वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाखाई चयो आहे त अमरीकी तजवीज़ुनि जो जाइज़ो वठी जवाब ॾिनो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पशियान चयो आहे त ॾाढ ज़रिए ईरान खे झुकाए नथो सघजे, जंग जे खात्मे लाइ हिक ॿिए जो एतराम ज़रूरी आहे।

सिंध काबीना कराची के पीआरटी मनसूबे लाट जो कम तेज करण की मंजूरी दी छी कम में देर से अगूणो ठीको रद्द एफ डब्ल्यू के कम देने की मंजूरी डी वही वे वजीर यूनिवर्सिटी रोड जो कम नवे दिन अंदर मुकम्मल करण की हिदायत नाकस कारकर्दगी या नाअहलियत अहदे से हटाने जो तरीकेकार भी मंजूर सिंध काबीना पारा वफाक का मुंतकल थियल तिबी इदारन के इंतजाम लाए नो कानूनी फ्रेमवर्क मंजूर किया पाया।

सिंध हाई कोर्ट कराची एस पी एस सी जा नतीजा मुअतल थियण वारो फैसलो 9 जून ताईं बरकरार रखी छॾियो। अदालत जो दरख़्वास्त गुज़ारन उमेदवारनि ऐं कामयाब करार ॾिनल 71 उमेदवारनि खे केस में धुर बणाइण जो हुकम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे कंट्रोलर पेशती अदालत खे रिकॉर्ड सील करण बाबति आगाही ॾिनी। अदालत गुज़िरियल ॿुधणी ते एस पी एस सी जे साल 2024 रिकॉर्ड खे सील करण जो हुकम ॾिनो हो।

सदर वजीर आजम वफाकी घरू वजीर ए बेन जो पाक चीन सफारती लागापन के 75 साल मुकम्मल थे ते चीनी हुकूमत ए आवाम के मुबारकू। सदर आसिफ जरदारी चो त पाक चीन लागापा गडियल एतमाद स्ट्रेटेजिक सहकार ए मजबूत दोस्ती जो रोशन मिसाल आन। वजीर आजम शहबाज शरीफ चो त पाकिस्तानी आवाम चीनी आवाम से हकीकी ए दिली मोहब्बत कन्दो आहे। मोहसिन नकवी चो त पाक चीन दोस्ती मिसाली एतमाद ए मोहब्बत ते बदल सहकार की मजबूत अकास आहे। पको में पसंद परणो कंदड़ नौजवान बबाहिर कतल हथियार बंदन मुजम्मल मेयो ए नदीम अली मेयो के कतल कयो। पुलिस मूजिब नौजवान काशिफ अली मेयो मुगेरी बिरादरी की औरत सां लाहौर की कोर्ट में पसंद जो परणो कयो हो जैं तां धुरन में छिकताण हलंदड़ हुई।

संस्कार कई वेंदो साईं सादराम जे अकीदतमंदनि जो ॾेह तोड़े परॾेह मां आमद जो सिलसिलो जारी। साईं सादराम सिंगापुर जे अस्पताल में इलाज दौरान ध्यानात करे पियो हो। पिथोरो बिनारी ऐं नौजवान परणो न थियण तां मुबैना तौर ते गॾिजी आपकात करे छॾियो। पुलिस चयो आहे त जमील मरी गोट में परणियल नारी जिया कोली ऐं नौजवान भूरो कोली वण में पाव खाई आपकात कयो। नारी जी शादी थियल हुई, वधीक जांच कयूं पिया। दादू जे घोट सूमर खान कमराणी में बि नौजवान मुबैना तौर ते आपकात करे छॾियो। पीटीसीएल मुलाज़िम 25 साला कयूम कमराणी पाव खाई ज़िंदगी जो इंतांदो, कारण मालूम न थियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड

0: अकाउंट कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए बुड़ी 247-3-41-200। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
1: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252786।
1: जी हाँ, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क।
4: ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एज ब्यूटी सोप। व्हाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, a product by Biocon International Pakistan.

0: ओकेजन आप सब प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है जनाब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स से जिसमें आप लोगों के लिए शामिल है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार फॉलो करेंगे उससे पहले जरा आज आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक यानी कि सवाल क्या होगा। तो आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है कभी बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं जिनके ऊपर हम कभी शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वैसे ही आज जरा एक और बात हमारी जिंदगी में जो कि हम शायद डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं लेकिन हमने कभी उस बात के ऊपर शायद ध्यान ना दिया होगा। तो आज आप मुझे ये बताइए जरा क्या आप ये चीज समझते हैं या फिर शायद आप जानते होंगे कि डेली यानी कि रोजाना अगर एक दिन का हिसाब लगाया जाए तो आप अपना चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं। क्या कभी आपने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है कि आप अपना रोजाना आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं ये आज आप मुझे बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो बताइए अगर आप नहीं जानते तो जरा फर्ज करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप अपना रोज जो है ना वो चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते होंगे। ऐसे हमें पता चलेगा कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कितना रखते हैं खूबसूरती का ख्याल रखने वाले हैं या नहीं समझ रहे हैं। ओके जी तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए क्या करेंगे अपना सेल फोन उठाएंगे मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस लेके अपना नाम लिखेंगे पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लारकाना FM 88.8 हमारा ऑफिशियल पेज है जनाब जिसके ऊपर आप आकर हमें ज्वाइन करने वाले हैं हमारी लाइव पोस्ट आप लोगों को मिलने वाली है। लाइव पोस्ट के ऊपर आप आ जाएंगे और पोस्ट को लाइक करेंगे कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे ठीक हो गया। तो जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर करते जाइए क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। शेयर करेंगे तभी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि भाईजान मार्केट में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो खूबसूरती जो है ना वो जितनी ज्यादा लोगों को बतानी चाहिए खूबसूरती के बारे में कि भाई आपको खूबसूरती कैसे हासिल हो सकती है तो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो बताया करें लोगों को कि भाई आप खूबसूरत कैसे हो सकते हैं खूबसूरत कैसे रह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हाँ जी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स कितने हैं क्वालिटी के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो प्रोडक्ट की जो है ना वो ये भी पता होना चाहिए कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात करें तो उसमें आप लोगों को दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि आप जानते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है ये दो प्रोडक्ट्स हैं। बाकी अगर हम व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आ जाती है और उसके बाद आप लोगों के लिए जो है व्हाइट एज की लवली क्रीम आ जाती है। अब ये दो क्रीमें हैं एक नाइट क्रीम है और एक ऐसा समझ लें कि डे क्रीम है यानी कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लगाते तो वो आप रात के टाइम लगाएंगे बाकी अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाते तो वो आप पूरा दिन लगा सकते हैं किसी भी टाइम लगाइए ठीक है रात में भी लगा सकते हैं लेकिन ये देखा जाए तो भाई उन लोगों के लिए जो कि अच्छी वाली फेयरनेस क्रीम की तलाश में और फेयरनेस क्रीम आपके हाथ में बिल्कुल मौजूद होगी जब आप व्हाइट एज की लवली क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए और उसके साथ साथ व्हाइट एज का आप लोगों को साबुन मिल रहा है और उसके साथ आपको व्हाइट एज का फेस वॉश मिल रहा है जो कि विटामिन सी के साथ साथ तैयार है और उसके अलावा आप लोगों के लिए जो है ना हाँ जी डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब है जो कि व्हाइट एज वालों का ही है लेकिन अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी क्रीम नाम लेकर आप परचेज कर सकते हैं जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूले से तैयार शुदा है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई है जो कि आपके चेहरे के ऑयल को कंट्रोल करेंगे आपके चेहरे के एक्नी का कंट्रोल करेंगे आप लोगों की खूबसूरती में मजीद इजाफा लाते जाएंगे क्योंकि जब एक्नी आपके चेहरे पर आ जाते तो यकीन जाने मजा ही नहीं आता जिंदगी ऐसी अजीब अजीब सी लग रही होती है। तो अगर आप भी टीनेजर से अगर आपके चेहरे पर भी एक्नी आना स्टार्ट हुए या फिर आप एक्नी से सफर करें काफी ज्यादा तो भाई आपको चाहिए कि आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी जो ट्यूब है ना वो जरूर ट्राई करके देखिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी। तो ट्राई करने में क्या ही हर्ज है ट्राई करके देखिएगा और उसके साथ साथ आपको मजे आ जाएंगे और साथ साथ टॉपिक को फॉलो कीजिए। जरा मुझे बताइए कि आप अंदाजा लगाइए या फिर क्या पता आप जानते ही होंगे डेली बेसिस पर यानी कि रोजमर्रा आप अपना चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं यानी कि कितनी मर्तबा आप अपना चेहरा आईने में रोज देख रहे होते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए यहाँ पर हुआ जाता है टाइम के शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ली जाए ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक और सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है पिलाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: जे एतमाद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखंदे।
2: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
3: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
4: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
2: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मेरे गैन न करूँ तुझे ब्लॉक न करूँ तुझे बैन, तू ना मेरा हेटर तू तो मेरा फैन।
4: ब्राइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहराब और मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। ओके जनाब, सो व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदी ताकि मोहब्बत और समाज और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताते जा रहे हैं कि आपने क्या कभी इस चीज के ऊपर गौर किया है कि आप डेली बेसिस के ऊपर यानी कि रोजाना कितनी मरतबा अपना चेहरा जो है ना वो आईने में देखते हैं, शीशे में खुद को देखते हैं, कितनी मरतबा क्या कभी आपने ये चीज नोटिस करी है? करिए तो फिर बताइए मुझे। और इसी के साथ साथ आप 888 और फेसबुक पर मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं और रखना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं या फिर खूबसूरत रहना चाहते हैं, ये तीनों सूरतें थोड़ी अलग अलग है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खूबसूरत बनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे जो खूबसूरत रहना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं। तो देखा जाए तो तीनों चीजें जो ना वो थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन बात यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है कि आप सब लोगों ने यानी कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का तो आप सब लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं, चाहे आपकी स्किन किसी भी तरह की है, आप खूबसूरत रहना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या फिर खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, इन सारे मामलात में आप लोगों के पास व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए के जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है एवोकाडो एलोवेरा और मिल्क से तैयार शुदा है। ये बहुत ज्यादा ऐसी नेचुरल चीजें होती हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा अहम होती हैं। तो अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन को जो है ना हमेशा फ्रेश बनाए रखती है और जनाब आपकी स्किन को फेयर बनाती है, उसके अलावा आपकी स्किन की हिफाजत करती है उन तमाम चीजों से जो कि आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे स्किन के ऊपर आ जाती हैं जिनके बाद जो है ना हमारा चेहरा खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके चेहरे पर जब एक नहीं आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब आपके चेहरे पर एक नहीं आना स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना थोड़ी सी अपनी जो आपकी डेली लाइफ होती है ना उसमें थोड़ा सा आपने चेंजिंग लाना होता है। एक तो ये कि आपने खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल करना होता है, दूसरा ये कि आपने अपनी केयर जो है ना अपने चेहरे की केयर वो कुछ ज्यादा करनी होती है। जिनके चेहरे पर एक नहीं आते ना उन लोगों से यही बस गुजारिश होती है कि आपने कुछ ज्यादा नहीं करना होता, बस आप अपने चेहरे का ख्याल जो है ना वो नॉर्मल लोगों से कुछ ज्यादा रखा करें, क्योंकि जिन लोगों के चेहरे पर एक नहीं आते तो उनको स्किन का जो ख्याल होता है ना वो कुछ ज्यादा रखना पड़ता है। तो अपने चेहरे को हमेशा क्लीन रखा करें और साथ में वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करें जो कि ऑयल कंट्रोल करें और साथ साथ एक्नी कंट्रोल करने में आपकी मदद करें। तो जो टीनेजर्स लोग हैं जो एक्नी

की वजह से परेशान बैठेंगे, आपके चेहरे पर एक नहीं आ चुके हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे, तो आपके पास मौजूद होना चाहिए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी क्रीम। ये जनाब डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब है जो कि नॉर्मली आपको कहीं से भी मिल सकता है, और ये जनाब आयुर्वेदिक फार्मुलेशन के साथ तैयार शुदा है, यानी कि कोई भी आपको टेंशन और घबराने वाली चीज ये नहीं कि भाई हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या पता हमारी स्किन खराब हो जाए, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि जनाब जब आप डॉक्टर पिंपल का ये एक्नी वाला ट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पर जो एक्नी है ना उससे फाइट करता है, आपके चेहरे पर जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खत्म करता है, आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो स्मूथ और क्लियर बना देता है, आपके चेहरे पर एक्नी मार्क्स हो या फिर आपके चेहरे पर जो है ना किसी भी तरह का एक्नी हो, ब्लैक पोर्स हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, या फिर जितनी भी सारी चीजें जो कि आपके चेहरे पर एक्नी बनाने का वजह बनती है, रीजन होती है, तो उन तमाम चीजों को खत्म कर देता है। तो ये डॉक्टर पिंपल का एक्नी क्लियर ट्यूब है, खास करके जैसे गर्मियों का सीजन आता है तो लोगों की एक्नी जो है ना वो खत्म ही नहीं होती और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, लगाने के तरीकेकार बहुत ज्यादा आसान है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल किया करें तो बस अपना फेस वॉश कर लें व्हाइट एज ब्यूटी सोप से, या फिर व्हाइट एज का फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं जो कि विटामिन सी से तैयार शुदा है। दोनों चीजों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी वाला जो ट्यूब है वो अपने चेहरे पर अप्लाई करें, जहां पर एक्नी हो वहां वहां पर लगाएं, चोट हो, कोई भी चोट का निशान हो, जलने का निशान हो, जितने भी निशानात होते हैं जिद्दी निशान रिमूव हो जाते हैं जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी क्रीम का। तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, रात के टाइम लगाइएगा और लगाने से पहले हाथों को और फेस को अच्छे से वॉश कीजिएगा। तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट्स मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो हमें बताते भी जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जा रहे हैं, कहां पर अवेलेबल हो चुके हैं, कहां पर अभी नहीं मिल रहे हैं, ये भी आप मुझे बताते जाइए। लेकिन अगर आप अपने करीबी चाहते हैं कि अवेलेबल हो जाए तो आप डायल कीजिएगा 03-1579-0595 ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर आपके सिटी में आपके गोट में ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल करते जाइए और खूबसूरत होते जाइए। खूबसूरती अब बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है, जैसे कहते हैं ना जैसे टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ता जा रहा है वैसे ही लोगों के लिए वो काम जो कि आप लोगों को बड़े मुश्किल लगते थे वो उतने ही आसान होते जा रहे हैं। तो वैसे ही आप लोगों के लिए ना खूबसूरती भी आसान हो चुकी है क्योंकि आपके लिए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। तो जाइए और परचेज कीजिए और इस्तेमाल करते जाइए। ओके जी, आपके मैसेजेस हैं जो कि जल्दी से पढ़ते जाएंगे वरना ऊपर चले जाएंगे। तो आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश आयो जी, माँ ठीक ताम बुधायो। और कहते हैं मसरूफियात बहाना भी हो सकता है और हकीकत भी, मगर नजरअंदाज करना हमेशा वाजे होता है। ये बिल्कुल सही बात है। हिदायतुल्लाह कहते हैं लवली दा जलवा सॉन्ग सलाम, कैसी हो, मैं सफा ठीक ताम बुधायो की आयो। और लड़की हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ कैसी हो मेरी प्यारी ओपी। और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, गुड आफ्टरनून, वेलकम करते हैं खुश आमदीद के साथ साथ। और ये गाना भाई मैं सोचने जो है ना ये प्रोग्राम का नया स्टार्ट किया है, मैं आपको कहती हूँ कि व्हाइट एज की लवली क्रीम भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो व्हाइट एज की लवली क्रीम के साथ साथ मुझे इस गाने की याद आ जाती है कि ये वाला गाना भी आप लोगों को सुनाना है। तो आज हिदायतुल्लाह ने फरमाइश कर दी तो मैंने सोचा चलो भाई ये वाला गाना तो हम लाजमी सुनेंगे। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम भी आप लोगों के लिए मौजूद है, इसके क्या फायदे हैं और आप क्यों इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। फिलहाल आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं, आप क्या कह रहे हैं, पोस्ट को इसी बात पर लाइक और शेयर करते रहिए।

आदल कहते हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, काश आप बचपन में टीचर होती तो डेली स्कूल आते हम भी, कभी कोई बहाना नहीं करती स्कूल ना जाने के लिए। अच्छा अच्छा, स्मार्ट किशोर भाई कहते हेलो हाय हाजिर, स्मार्ट हाजिर है, क्या बात है, स्मार्टू भाई आपको वेलकम करते हैं। और स्मार्ट किशोर कहते हैं कि अगर आप अपनी परेशानियों को गले लगाकर आई लव यू कह दें तो हो सकता है वो भी छोड़कर चली जाए। बात में दम था वैसे। हजार खंड तो भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम असलाम कहते हैं, छाला लाजवाब वाइट एश ब्यूटी शो ये न लवली दा जलवा दवा बाबा। अच्छा एस एन आर पानी वालेकुम असलाम छाला खुशायो। हजार खान कहते हैं सुबह शाम देखते हैं चेहरा हम।

सुबुह ऐं शाम जेको डॉक्टर लिखी ॾिनो अथव चावल हिकु दफ़ो सुबुह जो ॾिसो हिकु दफ़ो शाम जो ॾिसो मां तव्हां खां सवाल पुछियो आहे त तव्हां डेली पंहिंजो मुंहुं जेको आहे आईने में केतिरा चके ॾिसंदा आहियो, छा तव्हांखे हिन चीज़ जो अंदाज़ो आहे? ॿुधायो मूंखे। और किशोर भाई कहते कि टॉपिक में सुबह ऑफिस जाते वक़्त देखता हूं फिर वापस आकर देखता हूं, अगर छुट्टी हो तो दिन में 6-7 बार हो जाता है। अच्छा, यानी तव्हां एॾा सुहिणा आहियो, तव्हां पाण खे घड़ी घड़ी ॾिसंदा आहियो। सुठी ॻाल्हि आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। दर्दी दिल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम प्यारी, कैसी है? और उदास लड़की कहती टॉपिक में तो ज्यादा देखती हूँ, फेस वॉश भी ज्यादा करती हूँ, इसलिए मेरी स्किन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। इतना ज्यादा भी मत किया करो कि भाई आपके चेहरे पर जो ऑयल है नेचुरल ऑयल वो ही खत्म हो जाए। जब आपके चेहरे पर जो नेचुरल ऑयल होता है ना वो खत्म हो जाता है, तब आपके चेहरे पर मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जो फेस वॉश है ना वो 2-3 मरतबा किया करिए, इनफ होता है।

अच्छा किशोर भाई ईअं कयो ना त हिकिड़ो हिकिड़ो ड्रॉ विधो न त सभिनी जी शक्ति मिली वञे समझो त बताते एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, बिल्कुल वैसे एक ड्रॉप की कीमत तुम क्या जानो। दर्दे दिल कहती है कि अल्लाह अच्छे लोगों का इम्तिहान बहुत लेता है मगर कभी साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को सब कुछ दे देता है मगर साथ नहीं देता। बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी। और चाचा खालिद जुड़ी जो मेरे साथ माजुक दीदी टॉपिक को फॉलो किया है, कहाँ फॉलो किया है, यहाँ तो आपका सिर्फ मुझे यही स्टार्टिंग वाला मैसेज मिला है और बाकी शायद आपने पैनल पर मैसेज किए होंगे। ओके जी देखते हैं पैनल के जाने भी आते हैं। इकबाल लाशारी मेरे साथ मौजूद है, कहाँ से सुन रहे हैं, मीरपुर खास से सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं भाई जान को। और उसके अलावा आदिल कहते हैं कि टॉपिक आंसर में जब घर से निकलता हूँ तब चेहरा देखता हूँ, बस ना निकलो तब बस, ये भी सही है।

गानो ना मानन के डेडिकेट जे के व्हाइट हेयर सा प्रोडक्ट लगायन पया सोना थी जाय नल्ला सद को ओके जी अली अकबर ब्रो ही भाई हमें सुन रहे हैं सकरेंट से आपको वेलकम करते हैं खुश आमदीद के साथ साथ वेरी नाइस इधरा शो मेरे दोस्त की शादी है और सॉन्ग प्ले कीजिएगा शादी वाला ओके ओके ओके इमरान खान रुख मरसद माचुक दी नाइस प्रोग्राम थैंक यू इमरान भाई मोहम्मद उर्स लगारिया मरसद माचुक दी वालेकुम असलाम टंडो अलह यार से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम

0: आज क्या बात करें, इतना प्यारा गाना लगाया आप लोगों के लिए। इरम भी हमारे साथ मौजूद है। इरम क्या कहती हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप लगा सकती हैं, सर्दियां हो या गर्मियां हो, ये जितने भी प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं ये सारे मौसमों के लिए है। तो अभी सर्दियां नहीं बल्कि गर्मियां चल रही है ना, तो गर्मियों में भी लगाइए, जब सर्दियां आएगी तब आप सर्दियों में भी आराम से लगा सकते हैं, ठीक है, कोई मसले की बात ही नहीं है। गोट मोमन तैयब थे बुक हाबी बुला थे बुक कहते तमाम जो शो वेरी नाइस आहे मुखे गानो बुध रहा है जो तेरा मेरा है प्यार अमर, बिल्कुल यो गाना जैसा जरूर बुधना। मां बुधायां थी त मां पंहिंजो मुंहुं मुबारक जेको आहे केतिरा दफ़ा जेको आहे न ॾींहं में ॾिसंदी आहियां। वकास कहते फ्रॉम विलेज अली अच्छा शहदाद कोर से, सही है, आपको हमारे शो पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं। मिर्पुर खास से अब्दुल्ला महर, वालेकुम अस्सलाम, कहते बाजी मैंने मेरे फ्रेंड को व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम गिफ्ट दी है। वाह सही वाह, ले कराए छे तवां दोस्त जी। अफा देरी सऊ देरी फ्रॉम नवाबशाह, सलामती शो बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया भाईजान को, वेलकम करते हैं। और उसके अलावा हैं जी मीरपुर खासी अब्दुल्ला, नहीं बल्कि शुएब महर हैं बाजी, कुछ लोगों का चेहरा साफ और दिल साफ नहीं होता। अब्दुल्ला महर को सलाम दीजिए, इशारा होगा कहाँ गया वैसे। चले ऐसा वाक्य होता है, कुछ लोग सिर्फ चेहरे को साफ करने में लगे होते हैं, उनके दिल मेले हो चुके होते हैं, ऐसा भी मत किया करें। चेहरे के साथ साथ अपने दिल को भी साफ रखें, शफाफ रखें, और साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल करती रहें और अपनी नियत का भी ख्याल करती रहें। और टाइम हो जाता है जरा, हम जो है ना वो न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं मेरी जान, और उसके बाद जो है वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते, तो आपने कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं White Ace Beauty Products, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: मीडिया मूजिब मौसम नकवी ऐं अब्बास इलाक़े जे विच में जंग जे ख़ात्मे बाबति तजवीज़नि ते बि ॻाल्हियूं थियूं। मौसम नकवी जो हफ़्ते अंदर ईरान जो ही ॿियो दौरो आहे। ईरान खे वाइदो थियण ताईं को बि रिलीफ न ॾिनो वेंदो। तेहरान जे जवाब जो कुझु ॾींहं इंतज़ार कंदासीं। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त अमरीका सां राब्ते में रहंदड़ ईरानी बकोल आहिनि। तेहरान डील लाइ बेताब आहे, वाइदो न थियो त ईरान ते ॿीहर हमिलो बि करे सघूं था। ईरान जंग जे ख़ात्मे लाइ अमरीका जूं नयूं तजवीज़ूं मिलण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी पटी वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल वाकई चयो आहे त अमरीका तजवीज़ जो जाइज़ो वठी जवाब ॾिनो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पशियान चयो आहे ॾाढ ज़रिए ईरान खे झुकाए नथो सघजे, जंग जे ख़ात्मे लाइ हिकु ॿिए जो एतराम ज़रूरी आहे।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सैयद ज़ियाउर
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
7: खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: खुश خوشخبری خوشخبری اواں جی پینجے شہر ماتلی میں اواں جی جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
9: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
7: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی
9: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب
7: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجت 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
9: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر کمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
7: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4 सुनते रहो GFM 90.4
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहे?

0: 2 5 2 5 7 8 6।
1: जी हाँ, बुड़ी 331 पंजवी 786।
0: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

हूँ कि जी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से सुन रहे हैं मुझे जल्दी जल्दी से बताइए। चाचा खाले झूठ जो हमारे मौजूद है जी पैनल पर, वालेकुम असलम चाचा की आयो खुश आयो खैर सब खुश से तवा घर में। और चाचा खाले तुम्हारा गाने जी फरमाइश गई थोड़ो जो गाना तमाम मुश्किल नहीं डिफिकल्ट बुधायो आए, अगर मिली हो तो मैं हलाईंदम, न मिलो तो वरी सुबाने को बो गानों बुधी वटंदी सही हाँ सुबाने वैसे जुमो आ मुख्य लगे थे हाँ वाकई मैं सारी चीजें दुनिया की भूल सकती लेकिन अपनी छुट्टी नहीं भूल सकती मेरी जान है बुलाया। मुझे निंद्रा में भी पानी छुट्टी याद होती है। और वफा अब्दुल गफार खास के लिए मौजूद है फ्रॉम न्यू जतोई सिद्रा, मुस्कान आप कैसी हैं, मुझे मास्टर मंजरूर का कोई भी गाना सुना दीजिए। ओके जी डन हो गया। एडम कहती हूँ मुझे जानी जब आपकी भाई मेरी भांजियाँ बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी वो अकेले कैसे आ सकती हैं, वडी तो थी वही पर मतलब नंडड़ी रह जी हुई है तू दिमाग मारन मारो थे। वफा अब्दुल गफार खास के लिए तवा जो मोहब्बत हुआ आहिन भा, सजाद अली खास के लिए तवा सगड आहिन, ऐं दिलबर अली खास के लिए भी आहिन, उन्हें जी शादी आहे, उन्हें जे लाइ तव्हां फायज़ा अली जो गानो बुधन चाहियो था। चलो ठीक है, वैसे फायज़ा जिकड़ो मु गानो लगायो पर शादी वारे गाने जी फरमाइश अचे पई त भला हिकड़ो शादी वारो गानो हणूं था लिस्ट में जंहिंमें सभिनी खे राज़ी कयूं था, इहो फायज़ा जिकड़ो हुयो न शादी वारो गानो।

साईं वाह जो गानो हलायो आ उन खां अलावा अगर तव्हां सां सगड मौजूद आहियो किथे वाइट एज जा प्रोडक्ट नथा मिलनि किथे डी स्किन जा प्रोडक्ट नथा मिलनि मूंखे ज़रूर लाज़मी ॿुधाईंदा कयो जीअं असांखे ख़बर पई त बाबा तव्हां वठो था नथा वठो तव्हां में हलचल आहे या कोन सिर्फ़ चुप करे सुम्या पिया आहियो पंहिंजे घरनि में अच्छा युसरा असांखे ॿुधी पई युसरा सिर्फ़ खाली पंहिंजो नालो लिखी करे असांखे सेंड कंदी आहे सो युसरा तव्हांजो मोहबतूं आहिनि बाबा तव्हां पंहिंजे हुजण जो सबूत ॾींदा आहियो थैंक यू सो मच मक़सूद मल्हा के हिते मेहरापुर से आपका शो सुन रहा हूं हेलो सिद्रा मुस्कान कराची गया था शॉपिंग करनी थी गुड बैकग्राउंड बहुत शुक्रिया हबीबुल्ला थेबू के सॉन्ग ॿुधाइजो हाज़िर हाज़िर भाउ तव्हांजो गानो पको आहे तव्हांजी सीट ते वेही रहो एरम के थी आप ही प्लीज प्ले हा इहो गानो बि हलाईंदासीं मक़सूद के हिते सिद्रा मुझे बि तो गाना सुनाओ मास्टर मंज़ूर का मास्टर मंज़ूर का गाना भी लिस्ट में मौजूद है आप जरूर सुनेंगे जी और कहते मेहरापुर से आप हमारे साथ ही ओके जी सारे मैसेजेस के लिए आपका बहुत वाला शुक्रिया एक ही मैसेज को बहुत मतलब आपने शेयर कर दिया है थैंक यू जी फकीर राहिब माशूक मेमण मिठल मेमण आसिम मेमण बेरिया सिटी कोट बहादुर मौला इस्लाम मदद भाऊ के चौं था भली करे आया और एरम चादी से आप ही जवाब है याद नहीं है जब मैं आईने में अपने आप को देखकर जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे अपने आप पर प्यार आता है वाह वाह ये अलग लेवल की बंदी है बाबा अच्छा प्रिंस अहमद अली रिंद हैं फ्रॉम अहमदाबाद वालेकुम अस्सलाम जी तेरे स्वीट शो कल वाला हाँ जी बहुत शुक्रिया कल वाला शो आपको पसंद आया थैंक यू जी थैंक यू और ये हमारे साथ हैं तेरे सामने मेरा हाल तुम्हें क्या सुनाऊं ए दिलरुबा वालेकुम अस्सलाम बाजी क्या हाल है आपका शो अच्छा चल रहा है तमाम सुनने वालों को सलाम के बाद शायद आपका मैसेज जो है ना वो मिसिंग पार्ट हो चुका है पैनल पर जब भी मैसेज करें तो उसकी टाइपिंग जो है ना वो उर्दू वाली टाइपिंग मत लिखा करें क्योंकि ऐसे जो है ना थोड़ा मसला हो जाता है जब मैसेज मिसिंग पार्ट आ जाता है लफ्ज इधर के उधर हो जाते हैं तो अंग्रेजी वाली जो टाइपिंग ना वो लिखा करें और कश्यप हमारे साथ कहती आप बस क्या आपसे बहुत नाराज है अच्छा मुझसे क्यों नाराज है वैसे मैं तो मासूम सा बच्चा हूँ मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं

कम कोन हलंदो न ॾिसो कंहिंखे साड थो थिए अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा पोइ माण्हू तव्हां खां सड़ंदव अला वैसे ई सड़ंदा आहिनि पोइ कुझु ज्यादा सड़ंदा समझो था ओके सो हज़ार भाई कहते ओके मेरे काम का टाइम हो गया चले भाई काम भी जरूरी है वाकई काम कीजिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे इतना टाइम और ये आपकी मोहब्बतों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया है टाइम भी बचाता है जरा हम भी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाने लगे हैं तो आप बस यही मौजूद रहिएगा सुनते रहिए इंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए मैं यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो जो कि आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ ही जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहराब और मातली और जनाब लाड़काना की लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो। ओके जी, सो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स में आप लोगों को ये चीज तो कॉमन मिलेगी कि आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए ये प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं। तो अगर आप भी अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो जनाब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इजिली आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाते हैं, वहां से मालूम लेते हैं, नाम लेकर तलब करते हैं, आपको नहीं मिल रहे तो फिर आपको जो नंबर बताते हैं उस नंबर के ऊपर रब्ता कर लिया करें ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए, आपके आसपास के लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। तो नंबर है 03-15-799-0595। नंबर डाल करते रहिए ताकि आपके सिटी में भी आपके करीबी जनरल स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाए बिल्कुल जी ये सारे प्रोडक्ट्स, ताकि आप आराम से जाकर परचेज कर सकें। तो जल्दी जल्दी जाइए, अवेलेबल कराइए और परचेज करते जाइए। और साथ साथ भाई ईद के दिन भी करीब आते जा रहे हैं, ये चीज ये बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जैसे ईद करीब आती है तो आप लोगों के अंदर ये बात भी है कि भाई ईद ये वाली ईद होती है ना, खास करके गर्मियों में होती है, बहुत ज्यादा वाली गर्मी होती है, ऊपर से कुर्बानी कर रहे होते हैं, रश होता है, मेहमान आते हैं, तो उन सारी सूरत हाल में देखा जाए तो ऐसा होता है कि आपकी स्किन जो होती है ना वो खराब हो जाती है, तो खाना भी बहुत ज्यादा खाते लोग। अपनी स्किन का ख्याल रखिए और लाइट वेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए जो कि आपकी स्किन को जो है ना वो फ्रेश फील कराए रखें, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे। और व्हाइट एज की लवली क्रीम तो इस्तेमाल करना आप जो है ना ये मत भूलिएगा, व्हाइट एज की लवली क्रीम आप लाजमी परचेज कीजिए और आपकी स्किन जो है ना वो खूबसूरत रहेगी, ग्लोइंग रहेगी और हमेशा आप खूबसूरत रहेंगे। तो जरूर ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखें ताकि आपकी खूबसूरती भी आपसे बोले कि हाँ जी भाई अब सब ठीक है।

गानो एतिरो खूबसूरत आहे न, ॿुधी करे मतिलबु ही ॾाढो भलो महसूस थींदो आहे. ऐं गानो मूंखे डेडिकेट हुयो और ये आपके मैसेजेस हैं जिनको हम ज़ाहिर सी बात है पढ़ेंगे. अच्छा पैनल की जाने बातें हैं तो एक मिनट, मैंने कहा था कि आपके मैसेजेस पढ़े. अच्छा हाँ, ये हमारे साथ फिरदोस भाई हैं और फिरदोस भाई कहते हैं, अच्छा क्या मतलब आपने ये शायरी लिखी है. अच्छा कहते हैं, तुमने ऐसा किया मेरे जख्मों का इलाज कि मरहम भी लगाए वो भी कांटों की नोक से, मरहम भी लगाए वो भी कांटों की नोक से. वाह वाह वाह वाह.

काफी बड़े दिनों के बाद हमने ये गाना सुना है, उसी के साथ साथ ये गाना बस उनको डेडिकेट करते हैं जिनको ये अच्छा लगेगा। और साथ साथ अगर आप व्हाइट एज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बता दिया करें, ठीक है, शर्माया मत करें। और चाचा खालिद कहते हैं, भला पो ही वारो गानो हलायो, माँ भी कहो सिदरा चलो आया तुझे शो में वरी वरियो आया, जो भला मना आए तो मुझे शो में अचानक शो आ ता नहीं ना तो बाकी केर ईंदो।

लोगों को कंफ्यूज इस तरह बिल्कुल इस तरह किया जाता है. अच्छा संजय जयपाल भाई हमारे साथ मौजूद है. हेलो संजय भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं. हाँ जी बिल्कुल. अब आपके कमेंट्स पर यानी कि हाँ मुझे दिल जी को थोड़ी राजी थी यार, ये थोड़ा कमेंट करना है मजो ना आई तो वाला सदरा के लाई लाई कॉमेंट्स की आदत है विजी शरीर था ना जी के ये बिगाड़ियों भी तो ता है ना. अच्छा दर्दे दिल बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका नवाजिश जी नवाजिश. अच्छा ये हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून. माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान जी, आप कैसी हैं? मैं सफा भलिया यार. और कहती है सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड सब लड़कियों को. और कहती है कि टॉपिक बहुत मर्तबा देखती हूँ, बहुत मर्तबा से मुराद अच्छा चले ही जेको गानो ना ही असा फजीला सिंधी जे तरफा उन जे हस्बैंड के डेडिकेट कयूं था. ठीक है.

अरे सच्ची बताओ, मैं जब ब्रेक पर जाती हूँ ना, ब्रेक में होती हूँ, तो मैं खुद बोर हो रही होती हूँ. मैं सोचती हूँ कि इतनी सारी ब्रेक में मेरा इतना सर्च हुए. मुझे तो 4-5 घंटे मिलने चाहिए बकबक करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत बोलने वाला इंसान हूँ. तो थोड़ा लगता है, समझ रहे. और उसके साथ साथ जो है ना, ये बहुत ही प्यारा गाना हमने एंजॉय किया. और जिन लोगों ने अभी तक हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कीजिए. और अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 03-15-799-0595. अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 03-15-799-0595.

अच्छा एसन वैसे तव्हां चओ सही था, पर तव्हां खे बि जेको आहे न जुमेवार ॾींहुं मोकल हूंदो आहे न, मुंहिंजी मोकल त माना तव्हांजी बि मोकल, सभिनी जी मोकल, सभु मज़े करेंगे। अच्छा ये नोरे सिंह दुनिया भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है, एंजॉय करें एंजॉय करें। वासु भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो वासु भाई। ओगरी प्रिंस अफजल शाहीन हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, बहावल नगर से हमारे शो ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू जी, वेलकम करते हैं आपको।

अच्छा कहते हैं खाना ज्यादा खाते हैं ईद में, ये भी लोग अलग लेवल के बंदे वाकई में। गर्मियों में जब लोग बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं, बहुत ज्यादा खाने खाते हैं, तो मैं खुद ही सोचती हूँ। वैसे माई चवंदी आहे माण्हू चवंदा आहिनि ईद वारी ॾींहुं इलाही मानी खाईंदा आहिनि माण्हू, पर मां उहो वाहिद इंसान आहे जेको ईद वारी ॾींहुं शायदि मानी न खाईंदो आहे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वाला खाना देकर मेरा पेट भर जाता है। तो ये है हाँ। लेकिन ईद से पहले आप लोगों ने व्हाइट एश की लवली क्रीम लाजमी लेनी है, ताकि आप ईद पर जो है ना, अगर तैयार होना आपको बहुत मुश्किल लगे तो बस आप व्हाइट एश की लवली क्रीम थोड़ी सी मिकदार में लगा ली चेहरे पर, यूं आप रेडी हो जाएंगे। लोग कहेंगे वाह वाह चिलके तो चिलके दी क्या लगायो तो। अरे स्मार्टो गोपाल कहते हैं कि सिद्रा मुझे नहीं भी ऐसे इसीलिए कहते नहीं करना चाहिए, देखना जांच पड़ताल करनी चाहिए, माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि ते न लॻंदा कयो पोइ ईअं ई तव्हां हमेशा बेवकूफ़ थींदा रहंदा ज़िंदगी में। उन खां अलावा जेको आहे सो जेको आहे तेको आहे तेको आहे जेको आहे हीउ वारो गानो त लाज़मी हूंदो आहे असांजे प्रोग्राम में, अगरि हू ॿुधंदा त हीउ वारो त लाज़मी ॿुधंदासीं। सो हाणे सोचां पई त हाणे तव्हां खां इजाज़त बि वठूं, ठीकु आहे। अॼु चए थो तव्हां लंच कयो असांखे फॉर्चूनर घुर्जे रास की बात है वैसे असांखे बि

अच्छा दर्दी दिल कहती है कि एक तो सुबह उठते ही देखती हूँ, फिर काम से फारिग होकर देखती हूँ, फिर तुम्हारा शो सुनते सुनते देखती हूँ, 20 से 25 बार तो कर ही ले शायद इतनी मर्तबा। भाई अल्लाह से वाकई गाना तो शायरी वाला है, लेकिन आज जरा शायरी वाला मूड नहीं था तो बस छुट्टी दे दे मेरे को, माफ कर दो। अच्छा तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हमारी होने वाली है जी कल नहीं बल्कि परसों वाले प्रोग्राम में, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो मुझसे नाचीज से तो माफ कर दीजिएगा, और आप जो है ना वो वाइट एज के प्रोडक्ट इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा। वैसे वाइट एज के प्रोडक्ट्स आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं, ये भी आप जो है ना वो लिया करें ताकि आपको ये पता चले कि हम कहां से जाकर आसानी परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल किया करें 03-15-799-0595, ठीक है। वैसे जाने का तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा, आज पता नहीं आप लोगों से बातें करने का दिल कर रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कोई पीछे से धक्का लगा रहा है कि भाई जा अब तू, तो यस यस मैं जा रहा हूँ। सो भाई मुकलानी नाइस, सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक।

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: ईरानी परदेह वज़ीर अब्बास इराक़ी सां मुलाकात. खिते सूरतहाल समेत सियासी वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं. ईरानी मीडिया मौजूदु मोहसिन नक़वी ऐं अब्बास इराक़ी विच में जंग जे ख़ात्मे बाबति तजवीज़नि ते बि ॻाल्हियूं थियूं आहिनि. मोहसिन नक़वी जो हफ़्ते अंदर ईरान जो ही बियो दौरो आहे. ईरान खे मुआदो थियण ताईं को बि रिलीफ न ॾींदासीं. तेहरान जे जवाब जो को कुझु ॾींहं इंतज़ार कंदासीं. अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त अमरीका सां राब्ते में रहंदड़ ईरानी मक़ूल आहिनि ऐं तेहरान डील लाइ बेताब आहे. मुआदो न थियो त ईरान ते ॿीहर हमिलो बि करे सघूं था. ईरान जंग जे ख़ात्मे लाइ अमरीका जूं नयूं तजवीज़ूं मिलण जी तसदीक छॾी. ईरानी परदेह वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त अमरीकी तजवीज़ुनि जो जाइज़ो वठी जवाब ॾिनो वेंदो. ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त ॾाढ ज़रिए ईरान खे झुकाए नथो सघिजे. जंग जे ख़ात्मे लाइ हिक ॿिए जो एतराम ज़रूरी आहे. पाकिस्तान पारां इसराइली जारत जो शिकार बणियल गज़ा वासियुनि लाइ खाद खुराक खणी वेंदड़ इंसानी हक़नि जे कारकुननि इसराइल जे बदसलूकी वारे वाक़े जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत. तर्जुमान चयो आहे त ग्लोबल समूद फिल्टोला खे रोकण ऐं कारकुननि सां बदसलूकी आलमी कानूननि ख़िलाफ़ आहे. काफ़िले में शामिल पाकिस्तानी शहरी साद इदी समेत समूरनि इंसानी हक़नि जे कारकुननि खे आज़ाद करण जो मुतालबो. स्पेन ऐं इटली पारां बि इसराइली कदमनि जी मज़म्मत. स्पेन जे वज़ीर आज़म चयो आहे त फिल्टोला जे कारकुननि जे तज़लील क़बूलण जोगी नाहे. पंहिंजनि शहरनि सां बदसलूकी कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी. इटली में इसराइली सफ़ीर जी तरबी ऐं वाक़े ते वज़ाहत तलब कई वई. सिंध काबीना कराची जे BRT मनसूबे लाट 2 जो कम तेज़ी मंज़ूर ॾेई छॾी आहे. कम में देर ते अॻूणो ठीको रद. FW खे कम ॾियण जी मंज़ूरी ॾिनी वई. वॾे वज़ीर जे यूनिवर्सिटी रोड जो कम 90 ॾींहनि अंदरि मुकमल करण जी हिदायत. नाकस कारदगी या नाअहली ते उहिदे तां हटाइण जो तरीक़ेकार बि मंज़ूर. सिंध काबीना पारां वफ़ाक़ खां मुंतक़िल थियल तिबी इदारनि जे इंतज़ाम लाइ नओं क़ानून फ्रेमवर्क मंज़ूर कयो वियो. सिंधा कोर्ट कराची SPS जा नतीजा मुअतल करण वारो फ़ैसिलो 9 जून ताईं बरक़रार रखी छॾियो. अदालत जो दरख़्वास्त गुज़ार उमेदवारनि ऐं 71 उमेदवारनि खे केस में दुर्बाइण जो हुकुम. सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे कंट्रोलर पेश थी अदालत खे रिकॉर्ड फिल करण बाबति आगाही ॾिनी. अदालत गुज़िरियल ॿुधणी ते SPSC जे साल 2024 जी रिकॉर्ड खे सील करण जो हुकुम ॾिनो हो.

उत्तर वजीरिस्तान जे इलाके सपनवाम में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन चार खारजी दहशतगर्द मारजी विया। मारजी वियल दहशतगर्दनि में घुर्बल खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब बि शामिल। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब जी सिर जी क़ीमत 30 लख रुपया मुक़ररु कई वई हुई। मारजी वियल दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सिस शहरनि ते हमलनि जो मास्टर माइंड हो। खारजी दहशतगर्द उमर बोबाली मस्जिद ॿाहिरां ज़मीन अंदर बैंकर ठाहिण सां गॾु बारूदी सुरंगूं बि विछायूं हुयूं।

0: शाहीन कोहिन अनमोल और पिंकी के गिरफ्तार साथी जो बो बे केस में रिमांड वी छो कराची की अदालत गिरफ्तार जवाबदार मोहम्मद सुमेर के बिन केसिस में पुलिस के जांच की इजाजत दई छी। पुलिस मूजिब जवाबदार मोहम्मद सुमेर मोटरसाइकिल जरिए मनसाज सप्लाई कंद हो मिलंद रकम बैंक अकाउंट में मुंतकिल कंद हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
3: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
2: आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
7: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ए शिफाफ पानी
7: सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ए शिफाफ पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत।

0: कारोबार शादी ऐं तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
1: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
2: जी हा 2315-2575-786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर माकली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।

0: अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
0: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाए 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिपिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण बीमारियन हई में सूर चेल में सूर औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम साउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूम

0: लाए 47, 48, 200 टी।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां आयो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: रखे हो तो आवाज भी सिंची है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर माटली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003922।

0: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था जे में
2: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने बिया मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
1: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनेकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: खुशखबरी खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
1: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
1: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
0: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ए शिफाफ पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत।
3: अवाजे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहे है। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
3: 6 लीटर पानी की बोतल बी पानी जो बोतल मुतारिफ कराए रो है।
2: उनका अलावा असा रिफल की सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद
3: आवाज़ एतमाद के कायम कंदे अवाजी जरूरत जो ख्याल रख दे।
2: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी बिन तकरीबन लाए हाँ असा सा राबतो करो। असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी की सर्विस पिण मौजूद आहे। वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवाजे पेंजे शहर मातली में अवाजे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वन था जैमे
3: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने बया मुख्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वन था जै लाए मुख्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हूँ
2: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंझंद 2 वगे का रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट औरतन जे बीमारियों की माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
3: गायनोकोलॉजिस्ट औरतों की बीमारियों की माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ्ताब
2: डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वगे का शाम 4 वगे ताई डॉक्टर जहूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियों जो माहिर मंझंद 12 वगे का 1 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा।
3: डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर के ढी मंझंद 2 वगे का 3 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकारी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ है शिफा पानी सेहतमंद
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुस्न मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है की मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पिणी में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: जे एतमाद के कायम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे।
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
5: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-200 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315-2575-786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा

0: ताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347 बट्टी 41 200
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4। करो छो।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो।

0: 3 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
0: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। हुतनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
2: ऐं गायनाकोलोजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा, गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: किरदार अदा करे रहियो आहे। चीन बि पाकिस्तान जी टियाकड़ी वारनि कोशिशुनि जी हिमायत कई। गॾियल कोशिशुनि सां तरक़ीअ जा रस्ता तय कंदासीं। पाकिस्तान पहिरियों इस्लामी मुल्क आहे जंहिं चीन खे तस्लीम कयो ऐं चीन बिहार ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान सां जबल जीअं बीठल रहियो। वक़्त गुज़रण सां गॾोगॾु ॿिन्ही मुल्कनि जी दोस्ती मज़बूत थींदी वई। सी पैक पाकिस्तान जी मैशियत ऐं रोज़गार जी फराहमीअ लाइ अहम आहे। मुल्क में जटादार अमन जी क़याम लाइ दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग क़ौमी अज़म सां जारी रहंदी। वतन जो अमुन मां शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे क़ुर्बानीनि जो नतीजो आहे। शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानी लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो जी एच क्यू में शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे एज़ाज़ ॾियण वारी तक़रीब जो ख़िताब। आई एस पी आर मौजी फील्ड मार्शल शहीदनि जे वारसनि ऐं गाज़ियुनि खे फ़ौजी एज़ाज़नि सां नवाज़ियो। फील्ड मार्शल चयो त शहीद ऐं गाज़ी क़ौम जो फ़ख़ुरु आहिनि। शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानी लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल पारां कानून लागू कंदड़ इदारनि जी दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेड़ में लगातार कार्रवाई ते वखाण।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तानी लाइ मुकदस अमानत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो GHQ में शहीदन गाजन के एजाज देने वाली तकरीब के खिताब। ISPR मौजूद फील्ड मार्शल शहीदन के वारसन के गाजन के फौजी एजाजन से नवाजो। फील्ड मार्शल चयो तो शहीद ए गाजी कौम जो फख्र है। शहीदन की इज्जत ए कुर्बानी हर पाकिस्तानी लाइ मुकदस अमानत है। फील्ड मार्शल पारा कानून लागू कंदड़ इदारन की दहशतगर्दी खिलाफ वेड़ में लगातार कार्रवाई ते वाखाण भी कई। सरदारी तकरीब के खिताब कंदे चयो तो चीन से दोस्ती पाकिस्तान की परदेही पॉलिसी जो बुनियादी थंब है। तरक्की जो रस्तो पाकिस्तान ए चीन जो गडियल ख्वाब है। बिन्हीं मुल्क हमेशा एक बे की बुनियादी मफादन जो दिफा कयो। वजीर आजम चयो तो खिते में ईरान ए अमेरिका तकरार के हल में पाकिस्तान मरकजी किरदार अदा कर रो है। चीन बे पाकिस्तान के ट्रैकड़ी वाली कोशिशों की हिमायत कई। गडल कोशिशों से तरक्की जा रस्ता तय कंदी। पाकिस्तान पेरों इस्लामी मुल्क है जै चीन के तस्लीम कयो। चीन बे हर रुखे वक्त में पाकिस्तान से जबल जिया बीठल रो। वक्त गुजरण से गडो गड बिन्हीं मुल्क की दोस्ती मजबूत थी वही। CPEC पाकिस्तान की मैशियत ए रोजगार की फरहमी लाय अहम है। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची से मुलाकात। खिते की मौजूदा सूरत हाल समेत ट्रैकड़ी वाले मामलों से गाल। ईरानी मीडिया मूजिब मोहसिन नकवी ए अब्बास राखची विच में जंग के खात्मे बाबत तजवीजों से भी गाल। मोहसिन नकवी जो हफ्ते अंदर ईरान जो ही बो दौरो है। ईरान के मुआदो थे को भी रिलीफ न डनो वो। तेहरान के जवाब जो कुछ डी इंतजार कंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो अमरीका से राबते में रहंदड़ ईरानी माकूल आन। तेहरान डील ला बेताब है। मुआदो न थो तो ईरान से बीहर हमलो भी कर सकूं था। ईरान जंग की खात्मे लाए अमरीका जो नयू तजवीजू मिलने से तस्दीक कर छी। ईरानी परदेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई है तो अमरीकी तजवीजों को जायजो वी जवाब डनो वो। ईरानी सदर मसूद पशिकान है तो डाट जरिए ईरान के झुकाये न तो सकजे। जंग के खात्मे लाए एक बे जो एतराम जरूरी है। ग्लोबल समुंद फिलोटेला जा समूरा गिरफ्तार मेंबर इसराइली कैद में आजाद थी वया आहिन। केन तुर्किया मुंतकिल करण जी तैयारियों। पाकिस्तान गजा वासे लाए खाद खुराक खणी वींदड़ इंसानी हकन के कारकुनन इसराइल की बदसलूकी वाले वाक़े की मजम्मत कंदे चयो आहे त ग्लोबल समूंद फिलोटेला के रोकण ए कारकुनन से बदसलूकी आलमी कानून खिलाफ है। स्पेन ए इटली पारा भी इसराइली कदम की मजम्मत। स्पेन के वजीर आजम फिलोटेला के कारकुनन की तस्हीक कबूलन जोगी ना है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।